फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

0: हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गम हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आज बीफ बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ सुबह जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं।
1: मायूस ना हो,
0: मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए। हरि हरन की आवाज में पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सियू का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। हमारी सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम स्वागत किया जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं एक भजन जो पेश किया जा रहा है गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में। जरूर आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर हमेशा आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं गुरमीत और मीना की आवाज में सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एल्बम का नाम है हर हर महादेव। पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर सा भजन।

सुंदर भजन गुरमीत और मीना की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में एक सुंदर सा भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चले प्रोग्राम में गणेंद्र जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। आज की प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन जगेंद्र जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अबकी बार एक और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए रेडियो SBS के जरिए।

SBS के जरिए सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आंसर उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले अब की बार मिका सुखू जी की आवाज में एक सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

क्रिसमस की गई है। चले प्रोग्राम में आखिरी भजन पेश किया जा रहा है और आखिरी भजन होगा आरती भजन, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

इसी तरह से अभी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू जी के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है, फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा। चलिए अब की बार फिल्म धड़कन की ओर एक बार फिर से होगा, उदित नारायण अलका याग्निक एंड कुमार सानू प्रोग्राम में।

film Dhadkan. उदित नारायण और अलका साथ ही साथ कुमार सानू जे की आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई. फिल्म का नाम धड़कन, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना. रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना. स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-2266-6611.

की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में प्रेम अगन फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई।

Film Kanaal. रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

सेशन के आवास में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी अलका जी की आवाज में। अलका जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम सोल्जर।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज भी फिर बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 21 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। डोंडोदाग 21 मई का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 7 मिनट व्यतीत हो चुका है।

और मेरा ख्याल से आज बहुत सी सुनने वालों जो है अच्छे मूड में है, काफी सुनने वालों जो आज सुबह की वक्त स्टूडियो की ओर तार किया, सभी अच्छी और अच्छी मूड में है, इसलिए कि आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम। टेम्परेचर मेरा टेम्परेचर शाम का टेम्परेचर तकरीबन 22 डिग्री और आने वाले दिनों भी मौसम काफी खूबसूरत सुहाना मौसम, गर्मी मौसम होने वाले हैं, कहीं कहीं वीकेंड में टेम्परेचर 30 डिग्री दर्द खराद होने वाले हैं। तो आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है, यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तकरीबन 11 बजे तक प्रोग्राम पुरानी फिल्में संगीतों का जो है आप जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है दोपहर साढ़े 12 बजे से यानी कि हाल ऑफ एन से प्रोग्राम में फरमाइश पेश किया जाएगी। कल की प्रोग्राम में हमने आपको खबर किया कि 1 बजे से फरमाइश पेश होगा, लेकिन जिन लोगों की फरमाइश से पेश होना चाहिए तो उन लोगों ने गुजारिश किया है फरमाइश से हाल ऑफ एन से पेश करने के लिए, तो हाल ऑफ एन से फरमाइश से बस प्रोग्राम में पेश होगा। और आपको भी फरमाइश देना है सस्ती दामों में, खबर आप सुनते आए हैं कि सस्ती दामों में सिर्फ रेडियो SBS के जरिए आपकी फरमाइश पेश किया जा रहा है 5 यूरो पर फरमाइश, कहीं पर नहीं, कोई भी रेडियो पर नहीं, इतनी सस्ती दामों में आपकी फरमाइश बस पेश किया जा रहा है। और दुनिया की कोने कोने में अपना फरमाइश आप सुन सकते हैं मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए, सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए, और दूर दूर शहरों तक, भले देश के बीच में और प्रोविंसी साउथ होलैंड में DAB प्लस रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन, चले तुरंत पुरानी नखमे की ओर हम आपको ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, पहला गीत आज की प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में, खूबसूरत नगमे जरूर आप सुनते ही रहना। कुछ गाने हमने सेलेक्ट किया है, आपकी सेवा में बस पेश किया जाएगी। फिल्म का नाम अनीता, माइटी मुकेश।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद चले आज के प्रोग्राम में तलत जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का।

द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में फिल्म पतिता का गीत पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की ओर पहचान फिल्म का गीत पेश होगा। 1970 का फिल्म, फिल्म का नाम पहचान, मुकेश और लता मंगेशकर प्रोग्राम में। और गाना का बोल है कल दिल के बाद बस आज मौका है।

0: die film पहचान का गीत पेश की गए मुकेश और खास तौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मुकेश और लता जी की आवाज में, फिर से प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना। फिल्म प्रेम कहानी, उसी फिल्म का ये गाना।
1: ये बजा ही सही के हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़ कर मगर सहने

और रेडियो SBS की जरिए मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले किशोर कुमार की ओर, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम प्रेम नगर, उसी फिल्म का गीत की ओर।

बरखी आवास में ये गाना बस पेश की गई फिल्म प्रेम नगर, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुन वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656660। इस तार की नंबर पर हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। किशोर एनाशा

गीत बस प्रोग्राम में पेश किए गए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। हाजिर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। पहले प्रोग्राम में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था हिम्मत, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। किशोर कुमार एन आशा भोसले प्रोग्राम में अबकी बार ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की।

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई, दिल में जो बातें हैं, किशोर और आशा के आवाज में खूबसूरत गाना उस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चले अब की बार लता मंगेशकर और किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में फिल्म जुगनू का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। अब की बार मुखी सौराष्ट्र जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुन

गुप्ता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो अपना मोबाइल फोन टैबलेट के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। मुकेश और लता मंगेशकर अब की बार प्रोग्राम में होगा।

रंगोली का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में एक पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। दोनदाग 21 मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है एंड नेचुरल कोमंदा दाग वॉट इट हेल वार्म मोय वीर। Dus we hebben al een grote blok ijs al binnen voor de schaafijs. We zien Lukati Jati Rete, Jaha, Deemsdreef 237. Jaha, Radio SBSK, je programma, Hamara Full Digitaal Studio, Busbis Kia Jarahahe. Zometeen vanaf 12:30 vermaais. और किसके लिए फरमाइश होगा ये तो हमें खुद मालूम नहीं है, सरप्राइज ही सरप्राइज है। तो हल्फे इनसे बस प्रोग्राम में फरमाइश जरूर है और जरूर सुनते ही रहना संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम। आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इन दिनों सुनने वालों खबर सुनकर 5 euro में फरमाइश पेश किया जा रहा है। 5 euro में एक फरमाइश बस पेश किया जा रहा है। काफी सुनने वालों मेल किया है, रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, तार भी किया है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ऐसा है कि हमारी सुनने वालों को यकीन नहीं होते है कि रेडियो SBS के पास फरमाइश इतनी सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है, जबकि इन दिनों महंगाई की जमाना है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर आप सुनते ही रहना। आपके साथ हजारों हजारों सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में ये प्रोग्राम को सुनते हैं, फॉलो कर रहे हैं। एट दे बर्मन, राहुल देव बर्मन।

गाना जो पेश की गए कस्मे वादे फिल्म का गाना भी आपने सुना, एर डे बर्मन की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। सुन वालों, आने वाले वीकेंड जो है लंबी वीकेंड होने वाले है, पिंगस्टर वीकेंड होने वाले है, तो आने वाले सोमवार भी छुट्टी का दिन है और हॉलैंड देश के अंदर में काफी प्रोग्राम काफी फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया है। यूट्रेक्ट शहर के अंदर में भी एक डांस पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है और ये होगा सोमवार 24 मई। कब और कहां पर और कौन सा म्यूजिक ग्रुप रहेंगे आज की प्रोग्राम में जरूर हम आपको खबर करेंगे। प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना, जो सोमवार 24 मई

और म्यूजिक ग्रुप जो रहेगा आपको अभी से हम खबर करना चाहेंगे। म्यूजिक ग्रुप रहेगा यानी कि साखन साखन रियो सेलेक्शन। और ये कब और कहां पर होगा आज की प्रोग्राम में जरूर हम आपको खबर करेंगे। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जाएगी आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। लेकिन आपको खबर किया जा रहा है कि रेडियो SBS का प्रोग्राम 23:30 तक से बस पेश किया जा रहा है। और जब ही आप स्टूडियो की ओर आना चाहेंगे हर एक वेलकम है। गर्मा गर्म कॉफी चाय आपके लिए तैयार है। आप हमेशा आ सकते हैं लेकिन आने से पहले जरूर एक आस्परा का बनाइए। तो चले गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, लहू की दो रंग फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है।

uit de film Lahoo Ke Dorang. Zit na karo. लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना ये खास गाना। सुनने वालों ठीक सरहे 12 बजे से हलवेन से बस प्रोग्राम में फरमाइश है आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। किसके लिए फरमाइश पेश होगा जरूर आप सुनते ही रहना फनफ हालफ एन बस प्रोग्राम में फरमाइश पेश होगा रेडियो SBS की जरिए। उसी सुनने वालों है जो देश विदेश में सूरीनाम देश में दुबई में मॉरिशियस में और दुनिया के कोने कोने में सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। बहुत से देशों होते हैं जहां पर सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं स्वीडन में पोर्तुगाल में इंडिया भारत देश जहां जहां पर भी आप सभी देश विदेश में प्रोग्राम को सुनते हैं सभी को वेलकम कहा जा रहा है। इंडिया भारत देश में अनुरेश भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और ये गाना खास तौर पर अनुरेश सुनना चाहते हैं। इंडिया भारत देश में प्रोग्राम को सुनते हैं।

1965 का फिल्म, फिल्म का नाम सहेली। लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गए। इंडिया भारत देश का रहने वाला खासतौर पर अरुणेश ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो इसी तरह से पेश की गए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। हॉलैंड देश के अंदर इस वक्त मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम है और हमें भी मालूम है कि इंडिया भारत देश में भी मौसम इस वक्त भी काफी खूबसूरत होगा।

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen, een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar bijzonderheden nog op de weg, maar de spits is nu echt lang en breed achter de rug gelukkig. Op de A59 naar Den Bosch is nog steeds de weg helemaal dicht bij Os. Komt een ongeluk met twee vrachtwagens. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan tot die tijd via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan de A28 Zwolle Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken een spoedreparatie. De verbindingsweg is daar dicht en omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. De vertraging is 20 minuten. En tot slot nog de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 7 kilometer en een kwartier, omdat er één rijstrook dicht is.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Radio SBS website radiosbs.nl. उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं और तरह तरह की खबरें इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जा रहा है फरमाइश के बारे में रोजाना आपका दख होरोस्कोप ज्योतिष शास्त्र इसी वेबसाइट पर होता है मौसमी समाचार और आपको भी खबर किया जा रहा है कि कहां कहां पर हमारा प्रोग्राम आप डे या बे प्लस द्वारा सुन सकते हैं यूट्रेक्ट शहर के अंदर में प्रोविंसी साउथ होलैंड में हाँ मेडे नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ होलैंड में हमारा प्रोग्राम काफी शहरों में दूर दूर शहरों तक डे या बे प्लस द्वारा सुनाई देता है यूट्रेक्ट शहर के अंदर में भी सुनने वालों इन दिनों अब इंटरनेट रेडियो के जरिए नहीं लेकिन डीएबी प्लस रेडियो के जरिए प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं ये तो हमें मालूम है और काफी खुशी की बात है कि आप सभी इन दिनों इंटरनेट रेडियो के जरिए प्रोग्राम नहीं सुनते हैं लेकिन डीएबी प्लस रेडियो के जरिए अच्छी डिजिटल साउथ में ये प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है मॉरिशियस वहां पर भी हमारा एक सुनने वालों होते हैं जो प्रोग्राम हमेशा और हमेशा सुनते हैं खासतौर पर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम दुशन जिंगरी मॉरिशियस में हमारा प्रोग्राम इस वक्त भी सुनते हैं और एक गाना सुनना चाहते हैं लता जी की आवाज में राम तेरी गंगा मैली उसी फिल्म का गाना

0: आराम तेरी गंगा मैली, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई लता जी की आवाज में। और मॉरिशियस का रहने वाला दुशांत जिंगरी ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया। और इसी तरह से आप सब ही सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों, हम आपको खबर करना चाहेंगे और इंडिया भारत देश नोएडा से अरुणेश ये खबर किया है कि वहां पर इस वक्त 44 डिग्रीज है, यानी कि फिरत खराद, काफी गर्मी सा मौसम है इस वक्त इंडिया भारत देश में, जबकि यहां पर तकरीबन 22 डिग्रीज है और 22 डिग्रीज होने वाले हैं। कल से थोड़ा और गर्मी सा मौसम होने वाले हैं और खास तौर पर वीकेंड तक यहां पर कहीं कहीं 30 डिग्रीज देर तक खराद होने वाले हैं। फिर भी अरुणेश इंफॉर्मेशन देने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ दिन पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है,
1: जिसके सब
0: फिल्म गीत 1970 का फिल्म महेंद्र कपूर।

महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई गीत फिल्म का नाम जिसके सपने हमें रोज आते रहे। हंसरो मीठे की ये गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई रोजाना और रोजाना भी नए नए सुन वालों हमारा रेडियो SBS का ऐप पर आते रहते हैं हॉलैंड देश से हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश से। रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए भी आप अपना मोबाइल की जरिए ऐप कर सकते हैं रेडियो SBS का ऐप पर या तो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर काम में लाइए 030-262-6611। सूरीनाम देश में हमारा सूरीनाम देश में और वो भी पारामारिबो में हेलन हेलन भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं अभी अभी रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है हेलमाल सूरीनाम पारामारिबो सूरीनाम पारामारिबो से ऐप किया है और हमारा प्रोग्राम काफी देर से सुनते हैं। और एक गाना की मांग किया है और वो भी लता जी की आवाज में फिल्म का नाम साउथन की बेटी फिल्म का नाम तो चले सूरीनाम पारामारिबो की रहने वाली हेलन की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है कि हम भूल गए हर बात मगर तेरा

0: साउथन की बेटी, फिल्म का नाम था लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सूरीनाम पारामारिबो की रहने वाली हेलन की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम सूरीनाम देश में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुन वालों, आपको खबर किया जा रहा है कि मिलन साइड पार्क डेनहाग शहर के अंदर में इस साल होने वाले हैं 21, 22 and 23 augustus मिलन होगा साइड पार्क डेनहाग शहर के अंदर में। ग्राम फरहूर के लिए या टिकट खरीदना है जरूर आप जाइए वेबसाइट milansummerfestival.nl milansummerfestival.nl उसी पर जाकर अपना ग्राम फरहूर के लिए हर एक इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए टिकट भी आप खरीद सकते हैं। 21, 22 and 23 augustus मिलन होगा और वो भी मिलन साइड पार्क डेनहाग शहर के अंदर में। एक गाना और होगा आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। फिल्म का नाम छोटी सी मुलाकात, मोहम्मद रफी एनाशम। छोटी सी मुलाकात बस प्यार बन गई,
1: मुलाकात प्यार बन गई।

0: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गए। गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी और आखिरी गाना बस पेश की गए। कल शुक्रवार है, कल सुबह 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। आज दोपहर 2 बजे से लेकर के और 3 बजे तक हमारे आखिरी घंटे का प्रोग्राम में पुरानी नख्मे भी पेश किया जाएगी। तो चलिए यहाँ से प्रोग्राम में खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं और खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek. Beleef de cultuur.

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका दख हॉरोस्कोप होता है। जावेद अली प्रोग्राम में

सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की प्रोग्राम में।

दिल जो ना कह सका फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। चले गाना अतीफ असलम की आवाज में पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

दास्तानों और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे जो अब की बार पेश किया जा रहा है उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में।

पेड़ों, ऐसे न मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के है राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दे।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हमारी सभी सुनने वालों को शुभ दोपहर पेश किया जा रहा है। अनहेल खुद मेरा जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम रेडियो SBS का बस सुनते हैं। सुन वालों, एक दो नखमे के बाद बस प्रोग्राम में फरमाई से आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी रेडियो SBS की। सर ये जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अभी प्रोग्राम में फरमाई से पेश होगा रेडियो SBS की। सर ये आपकी फरमाई से जो है सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है 5 यूरो पर फरमाइश।

न्यू फ्यूचर में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना और होगा, एक गाना और होगा, उसके बाद फरमाइश की ओर हम आपको ले चलेंगे।

De valoquise van weer Bespiski Gay. 4 minuten voor half 1 studiotijd. Hoe je het? Gisteren zei आप सभी सुनने वालों को खबर किया गया है कि ये प्रोग्राम में फरमाइश पेश किया जाएगी, तो यहां से हम आपको ले चलते हैं फरमाइश की ओर।

लेलीस्तत शहर की रहने वाली यारख रोहिमा रोहिमा जगाए राम नारायण रोहिमा जगाए राम नारायण की आज डोंडरदाग 21 मई 65ste verjaardag है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा

शुभकामनाएं हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बस पीस किया जा रहा है। सरप्राइज ही सरप्राइज आपके लिए। आपकी पूरा परिवार की तरफ से ये सरप्राइज आपके लिए जो पेश किया जा रहा है आपकी फेवन सेस्तक्ष्त फरियार्दा जन्मदिन के मौके पर। तो यहाँ से प्रोग्राम में फरमाइशी जो पेश किया जा रहा है फरमाइशी जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लेलिस्ताद शहर की रहने वाली यारख रोहिमा जगाए राम नारायण के आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में फैफन शस्तक्ष्त फरियार्दा जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर पूरा परिवार बड़ी ही खुश होकर प्यारी प्यारी माता श्री लीना रामनारायण के तरफ से अपने प्यारी प्यारी बेटी के लिए तीन बेटी गायत्री अगलू जगाए रुसीता अलगू जगाए और सलीनी जगाए की तरफ से अपने प्यारी प्यारी माता श्री के लिए तीन दामाद मिर्विन अलगू अनिल अकलू और अविश जीबूत की तरफ से अपनी प्यारी सास पांच लड़कन रोसायरा रिश्वन रियान अलगू अलीशिया और सनीशा अकलू के तरफ से अपने प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना को फरमाइश कर रहे हैं।

लेलीस्तान शहर की रहने वाली यारह रोहिमा जगाई राम नारायण की आज डोंडरदाग 21 मई 65वां verjaardag जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर बड़ी ही खुश होकर प्यारी प्यारी माता श्री लीना राम नारायण की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी बेटी के लिए तीन बेटी गायत्री अकलू जगाई रूसीता अलगू जगाई और शलिनी जगाई की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी माताश्री के लिए तीन दामाद म्यूरविन अलगू अनिल अकलू और अविश जीबूत की तरफ से अपनी सास पांच लड़कन रोसायरा रिश्वन रियान अलगू अलीशिया और सनीसा अकलू के तरफ से अपने प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना को फरमाइश कर रहे थे। लेलीस्तान शहर की रहने वाली यारह रोहिमा जगाई राम नारायण की आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में 65वां verjaardag है। इसी खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी माताश्री लीना राम नारायण की तरफ से अपने प्यारी प्यारी बेटी की 65वां verjaardag की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे हैं आशीर्वाद के साथ।

लेलीस्तक शहर की रहने वाली यारह रोहिमा जगाई राम नारायण के आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में 65वां फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी माता श्री लीना राम नारायण अपने प्यारी प्यारी बेटी के जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और आशीर्वाद बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में लेलीस्तक शहर की रहने वाली यारह रोहिमा जगाई राम नारायण के 65वां फरियारदाग है। खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद अनिल अगलू की तरफ से अपने प्यारा प्यारा सास के लिए बेटी गायत्री अगलू जगाई की तरफ से अपने प्यारी माँ दो नातिन अलीशिया और शनीशा अकलू के तरफ से अपने प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस पेश कर रहे हैं।

लेलिस्तान शहर की रहने वाली रोहिमा जगाए राम नारायण की आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में फैफन सस्तखस्त फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद अनिल अकलू की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी सास के लिए, प्यारी बेटी गायत्री अकलू जगाए की तरफ से अपनी प्यारी माँ, दो नातिन अलीशिया और शनीशा अकलू की तरफ से अपने प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में लेलिस्तान शहर की रहने वाली रोहिमा जगाए राम नारायण की फैफन सस्तखस्त फरियारदा जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद मिर्विन अलगू की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास के लिए, बेटी रोसिटा अलगू जगाए की तरफ से अपने प्यारी प्यारी माँ, एक नातिन और दो नाती रोसेरा रिश्वन और रियान अलगू की तरफ से अपने प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये खास गाना को फरमाइश कर रहे हैं।

लेलीस्तात शहर की रहने वाली यारह रोहिमा जगाई राम नारायण की आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में फैफन सेस्तख्तफर यारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद म्यूरविन अलगू की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास के लिए प्यारी प्यारी बेटी रोसीटा अलगू जगाई की तरफ से अपने प्यारी माँ एक नातीन और दो नाती रोसाइरा रिश्वन और रियान अलगू की तरफ से अपने प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और भी फरमाइश सुबह सुनते ही रहना। आज बीफे बृहस्पतिवार 21 तारीख में लेलीस्तात शहर की रहने वाली यारह रोहिमा जगाई राम नारायण की फैफन सेस्तख्तफर यारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद अविश जीबोध की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास के लिए प्यारी प्यारी बेटी शलिनी जगाई की तरफ से अपने प्यारी प्यारी माता श्री की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे हैं।

लेलिस्तान शहर की रहने वाली रोहिमा जगाए रामनारायण के आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में फैफन सेस्तकस्तफर यारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर 3 नातिन और 2 नाती रोशायरा अलीशिया शनीशा रिश्वन और रियान की तरफ से प्यारी प्यारी नानी के जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना और ढेर सा प्यार दुलार देते हुए ये गाना को फरमाइश कर रहे थे। आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में लेलिस्तान शहर की रहने वाली रोहिमा जगाए राम नारायण के फैफन सेस्तकस्तफर यारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर 3 प्यारी प्यारी बेटी गायत्री अकलू जगाए रुसीता अलगू जगाए और शलिनी जगाए के तरफ से प्यारी प्यारी माताश्री के जन्मदिन की खुशी के मौके पर ढेर सा प्यार दुलार देते हुए ये गाना को फरमाइश कर रहे हैं।

लेलीस्तान शहर की रहने वाली यारखा रोहिमा जगह रामनारायण की आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में 65वां फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर तीन प्यारी प्यारी बेटी गायत्री अक्लो जगह रोसिता अलगो जगह और शलिनी जगह की तरफ से अपने प्यारी प्यारी माता श्री के जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। लेलीस्तान शहर की रहने वाली रोहिमा जगह राम नारायण की आज बीफे बृहस्पतिवार 21 तारीख में 65वां फरियारदाग जन्मदिन है। खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद अनिल अकलू के तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास के लिए, प्यारी प्यारी बेटी गायत्री अकलू जगाई के तरफ से अपने प्यारी माँ, दो नातिन अलीशा और शनीशा अकलू के तरफ से अपने प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई पेश कर रहे हैं।

लेलिस्तान शहर की रहने वाली यारह रोहिमा जगाए राम नारायण के फैफन सेस्तस्त फरियादा है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद अनिल अकलू के तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास के लिए, प्यारी बेटी गायत्री अकलू जगाई के तरफ से अपनी प्यारी माँ, दो नातिन अलीशिया और शनीशा अकलू के तरफ से प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। यारह रोहिमा जगाए राम नारायण रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से जन्मदिन लाख लाख बधाई हो, शुभकामनाएं हो। असर उम्मीद है ये सरप्राइज आपको काफी और काफी पसंद आते हैं। लेलिस्तान शहर की रहने वाली यारह रोहिमा जगाए राम नारायण के आज डोंगरदाग 21 मई 65वां फरियादाग है। इसी खुशी के मौके पर बड़ी ही खुश होकर प्यारी प्यारी बेटी शलिनी जगाई की तरफ से अपने प्यारी प्यारी माँ की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना को फरमाइश कर रहे हैं।

गाना पर फरमाइश जो प्रोग्राम में पेश की गई लेलिस्ताद शहर की रहने वाली यारख रोहिमा जगाई राम नारायण की आज बृहस्पतिवार 21 तारीख मई फैफन सस्तख्त फरियादाख जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी बेटी शलिनी जगाई की तरफ से अपने प्यारी प्यारी माताश्री के जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना को फरमाइश कर रहे थे। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और भी फरमाइश बस प्रोग्राम में सुनते ही रहना। आज बीफे बृहस्पतिवार 21 तारीख में लेलिस्ताद शहर की रहने वाली यारख रोहिमा जगाई राम नारायण की फैफन सस्तख्त फरियादाख है। खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद मिर्विन अलगू की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी सास के लिए, प्यारी प्यारी बेटी रोसीटा अलगू जगाई की तरफ से अपनी प्यारी माँ, एक नातिन और दो नाती रोसैरा रिश्वन और रियान की तरफ से अपने प्यारी प्यारी नानी के जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस पेश कर रहे हैं।

लेलीस्तान शहर की रहने वाली यारख रोहिमा जगाई रामनारायण की आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में 65वां यारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद म्यूरविन अलगू की तरफ से अपनी प्यारी सास के लिए, प्यारी प्यारी बेटी रोसिता अलगू जगाई की तरफ से अपनी प्यारी माँ, एक नातिन और दो नाती रोशायरा रिश्वन और रियान अलगू की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना को फरमाइश कर रहे थे। आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में लेलीस्तान शहर की रहने वाली रोहिमा जगाई राम नारायण की 65वां यारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद अविश जीबोध की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास के लिए, बेटी शलिनी जगाई की तरफ से अपने प्यारी माँ की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे हैं।

लेलिस्तात शहर की रहने वाली यारख रोहिमा जगह राम नारायण की आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में फैफन सेस्तरियादा जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दामाद अविश जीबोध की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास के लिए, प्यारी प्यारी बेटी शलिनी जगाई की तरफ से अपने प्यारी माँ की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। देखा जाए प्रोग्राम में एक आखिरी और आखिरी फरमाइश बस पेश किया जा रहा है यारख रोहिमा जगाए राम नारायण के लिए। लेलिस्तात शहर की रहने वाली यारख रोहिमा जगाए राम नारायण की आज बृहस्पतिवार 21 तारीख मई डोंदराग 21 मई 65वां फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी माँ लीना राम नारायण की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी बेटी के लिए तीन बेटी गायत्री अगलू जगाए, रोशिता अलगु जगाए और शलिनी जगाए की तरफ से अपनी प्यारी माँ, तीन दामाद मेडविन अलगु अनिल अकलू और अविश जीबोद की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास के लिए, पांच लड़कन रोशायरा रिश्वन रियान अलगु अलीशा और शनीशा अकलू की तरफ से नानी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे हैं।

रोहिमा जगह आराम नारायण की आज बृहस्पतिवार 21 तारीख में 65वां फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी माँ लीना राम नारायण के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी बेटी के लिए तीन बेटी गायत्री अकलू जगाई रुसिता अलगू जगाई और शरीनी जगाई की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी माँ के लिए तीन दामाद मिर्विन अलगू अनिल अकलू और अविश जीबोध की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी सास पांच लड़कन रोसाइरा रिश्वन रियान अलगू अलीशिया और शनीशा अकलू के तरफ से अपने नानी के जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। इसी तरह से प्रोग्राम में आखिरी और आखिरी फरमाइश पेश की गई यार रोहिमा जगाए राम नारायण के लिए फैफन सस्तक्ष्ट फरियारदा की खुशी के मौके पर रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से जन्मदिन लाख लाख बधाई हो शुभकामनाएं हो। हसरो मीठे फरमाइश सुना और काफी पसंद किया है। भगवान से यही प्रार्थना किया जा रहा है कि आपकी उम्र 100-100 साल तक बस बढ़ते ही जाए और हर साल इसी तरह से अपना जन्मदिन को आप मनाते रहे पूरा परिवार के साथ। रेडियो SBS के जरिए आप लोगों की फरमाइश से बस भी

रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में फरमाई से, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों, घड़ी की ओर देखा जाए 13 मिनट बाकी है 2 बजने में, 13:04 स्टूडियो टाइट हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

जीना यहाँ मरना वहाँ, इश्क सिवा जाना कहाँ। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में एक और खास गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश की आवाज में आपके

मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में ये गाना आप सुनते ही रहें।

0: आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के

0: मस्ताना।
1: खासतौर पर आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले काफी प्यार भरे गाना की ओर, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर और वो भी खास तौर पर बदलते रिश्ते फिल्म का नाम है। किशोर कुमार और अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर अब की बार प्रोग्राम में होगा।

कल्याण पूरा और मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए आज के प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। आलमगीर और खासतौर पर मेहनाज की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

इसकी आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना पाकिस्तानी फिल्म का गीत जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा।

बदमाशरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये खास गाना बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर प्रोग्राम में

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। किशोर कुमार प्रोग्राम में।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352565566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस गजों दूर जुबेन नौटियाल दे दी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाउ फेर्दर मैथ शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा ये रात ताल अद फिल्म कभी अलविदा ना कहना कौम तत लीचे मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी और द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे एन खसों दूर जुबे नौटियाल कॉम्प होने लगा और द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम अ द फिल्म क्यों हो गया ना, एंड इट इज एक्टेड डोर विवेक ओबेरॉय एंड ऐश्वर्या राय। दी टाइट वारस आर डेटे। Uit de film Want It komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है वाज आउट द फिल्म आशिकी एंड इज गेजोंग डोर उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल। Het volgende liedje in het programma Geet om Kelleher is gezongen door Nawazuddin Siddiqui. Uit de film Bole Churia komt Swaggy Churia.

मुझे साजन के घर जाना है, इसका सॉन्ग दूर अलका याचनिक, सोनू निगम एंड जसपिंदर ने रूला एंकवा द फिल्म लज्जा. Het volgende liedje in het programma Giet Onke Leher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Bas Ik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.

और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

0: हिंदू की जवानी है फिल्म का नाम और अभिनेत्री है कियारा अडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज़ में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।
1: जाऊं

0: ऐसी मुसीबत कैसे हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूल।

0: गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर,
2: मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे इस अर्ध फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं dit prachtig liedje is gezongen door Kumar Sanu en Anuradha Poudwal. Het volgende liedje is gezongen door Abhay en Shreya Ghoshal uit de film Panipat komt Sapna hai sach hai.

सुन मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस सॉन्ग दौर अखिल सचदेव वेंकम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया कम खुशों दूर सोनू निगम एस निधि चौहान मैंने दिल तुझको दिया इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली इस किस्म उधर बेनी दियाल अनमोल मलिक एंड अनु मलिक दे सकेर अत क्वाम आउट द फिल्म हंगामा 2 गाँव दा फर्दर मेट हमेशा तेरे साथ रहूंगा आउट द फिल्म कृष्णा कॉटेज किस्म उधर कमाल खान.

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इज आउट ऑफ द फिल्म हॉल गर्लफ्रेंड एंड इज सॉन्ग डोर अरिजीत सिंह एंड शशा तिरुपटी. हाँ तो फैदर मैथ जुबेर नौटियाल मैत आउट द फिल्म सनक. सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है.

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागी।

एल्बम बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवाज और द फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली तेज का सोहदोर कुमार सानू एंड प्रीति और द फिल्म यादें कम तो फोहत लीजिए फिर रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले। जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

0: है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है,